दिखाई सत्य साई के मचाई चेंगे सच्ची बाप प्रेम बाप चेंगे Thank you.

पांडुरंग विठला जय पुंडरीनाथ विठला पांडुरंग विठला जय पंडरीनाथ विठला